का सचमुच गुरु अर्जुन देव ही हरि दा रूप है। तो फिर उस रिखी ने गुरु अर्जुन देव पातशाह दे चरणों में विश्वास छड़ दिते ते फिर जूनिया तो मुक्त होके निरंकार दे देश चला गया। ताई आख्या जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी गुरु अर्जुन देव पातशाह दा नाम प्यार नाल सिदक नाल परोसे नाल जपेगा प्यारी सार संगत ओ जूना तो रहत हो जावेगा। जूना दे फिर 84 लाख त्रिगड़ जूना विच ना आवेगा। ओ जो जपेगा तन गुरु अर्जुन देव पातशाह दा नाम आओ प्यार नाल जपिए।

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डारे ओढ़े वस्त्र का

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुज प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माई लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

पहले काले विच हिरण्यकश्यपु रूपक ते सुलफाग विच आएगा, दूसरी बारी तीन ताल ते सुलफाग विच आके फिर इसका स्थाई देते मुकाव होगा। इसका यह भी लय जी है एक दूसरे के नाल मिलनी चाहिए है, पर ताल विच एक खास विशेषता होंगी है।

नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने, वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री।

सुभता हाथ सोही, सुभता हाथ सोही, नमो लोहे की चोट का झले लहंती, नमो जीव ज्वाला मुखी जो बलंती, नमो जीव ज्वाला मुखी जो बलंती, नमो पान की बान गंगा तरंगी, नमो पान की बाण गंगा तरंगी, तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी, तेरे शाम है मोक्ष दाती।

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद तागड़दन तीरंग।

नजारे वजदे जोधे गजदे ते साध सिंह जी जंग हो रहा साहब कहते नागरतन झागरतन पागरतन पाजे नागरतन झागरतन पागरतन पाजे सागरतन का जी महा

0: भाई नंदलाल जी।
1: ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त, हमेशा जिंदा अस्त। ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

सिर दीजे, सिर दीजे हस्ती सिर ज्यो अंक से है एरन ज्यो सिर दे मंतन आगे रख के उभी सेव करे उभी सेव करे सेव करो करना नित की। श्री मुखवाग पातशाही दसवीं सेव करो करना नित की जै सेवत चार पदार्थ पइए जै सेवत चार पदार्थ पइए नाम लिए जम त्रास मिटे नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण से धैये लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे लोक परलोक सभी सुधरे लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए।

चार ताल दे अंदर ए रीतबद्ध है। इस नु ध्रुपद ताल भी कहंदे ने, चार ताल भी कहंदे, ध्रुपद ताल भी कहंदे। सर्व करना

पर तेरा अग्गा नहीं सवरेगा, गुरु नानक दे दर दी सेवा करेगा ता तेरा ए लोक भी सुखी होवेगा ते फिर परलोक भी तेरा सुधर जावे। जिसने भी गुरु नानक दे दर ते आके निष्कामता दे नाल सेवा कीती गुरु नानक दे दरों उस दियां चोलियां भरियां गईं। भाई आदम जिसने अपने जीवन विच बड़े पीर फकीर औलिया देवतियां दी पूजा कोई भी ऐसा दर नहीं छड़िया जिथे ना गया होवे किस कामना करके मन विच कामना है भाई घर विच कोई बूटा लग जावे औलाद हो जावे। जो भी किसे पीर फकीर ने हुक्म कीता ओ कुछ कीता पर कितों भी मुराद पूरी नहीं हुई निराश होके आंसू बहांदा आ रहा है ते गुरु का सिख अगों मिल गया आख्या भले पुरुष तू बड़ा गमगीन नजर आंदा है ते तेरे प्यार आंसू अखां दे विच आंसू ई आख्या सारी उम्र कालना कीती जो भी कोई पीर फकीर ने जो कुछ भी किया मैं कीता है पर मेरे घर कोई बूटा नहीं लग्या मेरी इच्छा सी के मेरे घर कोई बच्चा हो पैंदा क्योंकि शास्त्रकार भी कहंदे हन कि जिस दे घर औलाद ना होवे उदा संसार नालों रिश्ता टूट जांदा है। उच्चारण करो श्री भाई गुरु ए बड़ी मिठी मुराद है। गुरु के सिख ने जदों ए सुनिया ते आख्या फिर गुरु नानक दे दर ते जेड़ा भी गया है वो खाली नहीं आया ते गुरु नानक दी चौथी जोत हुण गुरु रामदास पातशाह श्री अमृतसर साहिब विखे सेवा करा रहे हन। तू उथे जा तेरी चोली जरूर खैरात पवेगी जरूर बख्शिश होएगी तेरे ते। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई आदम और उसकी घरवाली गुरु नानक दे दर ते सिद्धक और पामना दे नाल आके सेवा विच जुट गए। इना दी सेवा की है बार जांदे हन लकड़ा चुग के ले आंदे हन अद्धियां लकड़ा गुरु के लंगर विच दे देंदे हन ते अद्धियां अपने पास जमा रख लेंदे हन ते बाकी का जो समा है वो गुरु के लंगर विच गुरु की संगतां दे जूठे बर्तन मांज के सेवा करके अपना जीवन सुफला रहे हैं। नेत दे नाल पिशावर तो संगत आई हजूर दे दीदार लई अत दी ठंड सी इधरों बारिश चल पई बड़ी सर्दी और साहबां कोल इतने संगत ठहराण का कोई इंतजाम भी नहीं सी। भाई आदम ने सोचिया भाई क्यों ना जेड़िया लकड़ा जमा रखिया हन ओ संगतां दी सेवा विच ला दितियां जान थां थां ते आके लकड़ा बाल दितियां संगतां नूं निघ बख्शी। धन गुरु रामदास पातशाह रात दे समय जदों आए ते थां थां ते लंबू लगे होए वेखे संगता आले दुआले बैठ के समा सफल कर रही हन सतगुरु बड़े प्रसन्न होए आख्या भाई ये सेवा किसने कीती है उसनु बुलाओ आख्या जी भाई आदम है दोनों दंपति बड़े प्यार दे नाल इत्थे सेवा करदे हन रोज लंगर लई लकड़ा ल्याउंदे हन ते कुछ बचा के घर रख लेंदे हन अज ओ सारियां दियां सारियां लकड़ां लिया के इत्थे आके उन्होंने बालियां ते संगतां दी सर्दी दूर कीती। गुरु रामदास पातशाह बड़े प्रसन्न होए अमृत वेले दे दीवान विच भाई आदम नूं बुलाया गया हजूर ने बड़े प्यार दे नाल पुछया भाई आदम तेरी सेवा थाई पई है तेरी कालना गुरु नानक दे दर ते प्रवान हो गई है मंग लै जो मंगना है।
भाई आदम वडेरी उम्र है, 50-60 साल की उम्र है, हुण संगत दे विच बच्चा मंगदे आ शर्म आ रही। हजूर कहन लगे जा अपनी घरवाली नूं वी लै आ, जो तेरा सिदक है जिस प्यार नूं मुख रख के तू गुरु नानक दे दर दी सेवा कीती है ओ वस्तु भाई मंग लो। अपनी घरवाली नूं लै आया, इन्हां दोवां ने हथ जोड़ के बेनती कीती, गरीब नवाज जे फिर कामना पुछदे हो तां कामना तां ए है भई कोई घर विच बूटा लग जांदा, कोई बच्चा हो जांदा घर विच। गुरु रामदास पातशाह ने अंतर दृष्टि नाल तकिया भई इन्हां दे भागां विच 7 जन्म कोई औलाद नहीं लिखी, पर इन्हां ने गुरु नानक दे दर दी सेवा कीती है। ता हजूर बड़े प्रसन्नता दे घर विच आके कहन लगे भाई आदम तेरे भागां विच औलाद तां कोई नहीं लिखी, ते तू गुरु नानक दे दर दी सेवा कीती है, इस लई असी अपना बच्चा इक तेरी गोदी पाउंदे हां, और बच्चा होवेगा उसका नाम भगतू रखी, बड़ा भगती दा अवतार होवेगा। और साथ संगत भाई आदम जिसने गुरु नानक दे दर दी सेवा कीती, और भाई भगतू जी पैदा होए, और उन्होंने दसम पातशाह तक अपनी सेवा निभाई। इसे तरह अगों जो औलाद होंदी गई उन्होंने मुख सेवा जो गुरु घर दी सी ओ करके अनेका पुलिया पटकिया नू गुरु नानक दे दर ते जोड़िया, आप ही नहीं जुड़े अनेका नू लिया के जोड़िया, और गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने इन्हां नू प्रचार करन लई नियत कीता। उचारण करो श्री वाहिगुरु। अनेका दा भला कीता जिसने गुरु नानक दे दर दी सेवा कीती है, ओ फिर मुराद तो खाली नहीं गया, जो उसने मंगया है ओ मिलया है उसनु। इसलिए हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं, आपे सेवा लायन आपे बख्शिश। गुरु नानक दे दर दी सेवा भी वड्डियां भागां करके प्राप्त होंदी है, ते जिन्हां नूं सेवा मिल गई है उन्हां दियां झोलियां भरियां गईयां, जिन्हां ने कामना दे नाल सेवा कीती उन्हां दी मनोकामना पूर्ण हो गई, ते जिन्हां ने गुरु नानक दे दर दी निष्कामता नाल सेवा कीती है ओ गुरु नानक दा रूप हो गए। उचारण करो श्री वाहिगुरु। हजूर बख्शिश कर रहे हैं भाई, सेवा करनी है तो गुरु दी कर, सेवा करनी है तो अपने मालक दी कर, तेरा लोक भी सुखी होवेगा, परलोक भी सुहेला होवेगा, आपे सेवा लाए।

साधु की संगत जपन वाले की संगत विच तन की भी शीतलता प्राप्त होंदी है, मन की भी शीतलता प्राप्त होंदी है। तन के रोग भी कटे जाते हैं, मन के रोग भी कटे जाते हैं जदों जपन वाले की संगत प्राप्त हो जाए। इसे लिए हजूर बाणी में बख्शिश कर दे नह शीतलन चंद्र देवा। चंद्रमा बेशक सारी वनस्पति नूं रस बख्शद है, शीतलता प्रदान कर रहा है, पर जे किसे दा मन विकारां दी अग विच कलप रहा होवे, सड़ रहा होवे, चंद्रमे की शीतलता उथे ही कम कर सकती। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इसे तरह ही बावन चंदन तन तो शीतल कर सकता है पर मन शीतल नहीं कर सकता। सर्दी की रुत है, शरीर नूं ठंडक मिल सकती है जे मन विकारां दी अग विच सड़ रहा है, उसनूं शांति कित्थे मिलेगी। हजूर कहते हैं नानक शीतलन साध सवजने, जपन वाले की संगत विच जदो तू भी जपेगा सतनाम श्री वाहिगुरु आवे साहिब चित तेरिया भगतां दिखियां, ते फिर की होवेगा मन की कटिए मैल साध।

तारक हमेशा ही पुला कर दे हन। भूले बारक अनक लख बरिया, कितनिया को पुला कर दे है बारक उसकी गिनती नहीं। पर तेरी रहमते नजर तेरी बख्शिश सदा ही रहती है, जदों ही बारक कोई गलती करने लगता है, क्योंकि बारक अनजान है। बच्चा अग नू हाथ पा लेगा है, उसनू पता नहीं कि मैनू ये जला देवेगी। पर हे वाहिगुरु, जिस तरह माता पिता उस अग्नि तो बच्चे नू बचा लेंदे हन, चुक के अपने गल नाल ला लेंदे हन, तुम्हें ऐसे तरह सानू अपने गल नाल लाउंदा है। चंचल मत बारक बपड़े की सर्प अग्न कर मेरे, बच्चे नू कोई पता नहीं भाई ये वस्तुआं मेरे लिए नुकसान दे हन। बच्चा अग नू भी अनजाने हाथ पा लेंदा है, सप नू भी हाथ पा लेंदा है, पर मां सदा ही उसनू चुक के अपनी गल नाल लाउंदी है, उन्हां खतरियां तो उसनू बचा लेंदी है। हे वाहिगुरु, तू भी इसे तरह मेरी रक्षा करदा है, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। गुरु अर्जन देव पातशाह अकाल पुरख का शुकराना कर रहे हैं।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद मानिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गल बात पंजाबी विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिया, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी ता उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाप कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुश

जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

सूत कलह न कीड़िया तू चब लंगाइए सावन रहन पंभीरिया तू पार बसाइए कुंजड़िया विसाख विच जो जू पर आइए बिन गुरमुक्त न हो बिन गुरमुक्त न हो।

थोड़ा जिन्ना भी मोह नहीं, बस प्यार गुरु नाल, सत्कार गुरु दा, महिमा गुरु दी, ते हर वेले ए गुरु